जाम साथी धुमधाम राइड सपन नया इबी मेरो दिया गुबी सँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe.